दोस्तों, ताजी हवा में सांस लेना आत्मा के लिए औषधि के समान होता है। ताजी हवा में गहरी सांस लेने से ना केवल फेफड़े भर जाते हैं बल्कि मन भी शांति से भर जाता है और खुशियां ही खुशियां चारों ओर छा जाती है। तो क्यों ना हम भी ताजी हवा में सांस लें।

दोस्तों, बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जो केवल संगीत ही नहीं बल्कि जीवन जीने के गहरे और प्रेरणादायक सबक भी सिखाती है। यह हमें अहंकार त्यागने और हमेशा मधुर स्वभाव रखने की प्रेरणा देती है। बांसुरी के भीतर कोई गांठ नहीं होती। ये सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो मन में किसी भी प्रकार का अहंकार, द्वेष या बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। जब आप बांसुरी में फूंक मारते हैं ना, तो वो खुद को पूरी तरह से खाली कर देती है। इसका अर्थ है कि जब तक हम अपने दिमाग से पुराने विचारों का बोझ और अहंकार खाली नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान और सफलता रूपी संगीत जीवन में नहीं उतर सकता। बांसुरी में जितने भी छेद होते हैं, वे चाकू या गर्म लोहे से छेद कर बनाए जाते हैं, यानी उसे बहुत दर्द सहना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब उससे धुन निकलती है ना, तो वो हमेशा मीठी और सुरीली होती है। ये सिखाती है कि चाहे कितने भी दुख या परेशानियां क्यों ना आए, अपनी बोली और कर्म में हमेशा मिठास बनाए रखे।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से

0: अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
2: I know that paper leak is not a mamooli vishay. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
1: The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Wangchuk's wife, Geetanjali Angmo, and senior leaders of APEC's body of Leyla

0: सुनिएगा अगर आप खेल के शौकीन हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं हम नहीं जान पाते हैं, इन झलकियों के दौर में जान लेते हैं। चलिए सुनते हैं।
1: The Commonwealth Games.
2: आवाजें अनेक, नारा एक। अगले 10 दिन सात समुंदर पार स्कॉटलैंड के ग्लासगो की फिजाओं में भी इंडिया इंडिया के ये नारे गूंजते सुनाई देंगे, क्योंकि आगाज हो चुका है 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का।
3: Olympic javelin champion Neeraj Chopra is the big attraction. He won gold at the 2018 Commonwealth Games. Boxer Lovina Borgain is back as well and brings in the baton. And three-time Commonwealth gold medalist and Tokyo Olympic silver medalist Mirabai Chanu carries the India flag. He won 61 medals last time in Birmingham, a long way from a single bronze at their first game in 1934.
4: 123 खिलाड़ी 10 अलग अलग खेलों में टीम इंडिया की जर्सी पहन तिरंगे को सबसे ऊपर लहराने का सपना लिए उतरेंगे और उनके साथ उतरेगी करोड़ों भारतीयों की प्रार्थनाएं, उम्मीदें और शुभकामनाएं।
2: अलग अलग भाषा वेशभूषा वाले सभी देशवासियों की धड़कन एक होगी। नीरज चोपड़ा का हर भाला जब आसमान की ओर जाएगा तो उसे देखने वाली निगाहें अलग अलग होंगी, लेकिन उम्मीद एक होगी।
4: लवलीना का हर पंच सिर्फ सामने वाले को पीछे नहीं धकेलेगा, शायद किसी छोटे शहर की लड़की को ये यकीन दिलाएगा कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं।
2: मीराबाई चानू जब वजन उठाएंगी तो सिर्फ बारबेल का वजन नहीं होगा, उसमें करोड़ों उम्मीदों का भार भी होगा और उसे उठता देखकर शायद हमें भी अपने कंधे थोड़े मजबूत लगेंगे। खेलों में मुकाबले अलग हो सकते हैं, लेकिन सपना एक है, अपने तिरंगे को सबसे ऊंचा देखना।
4: हाँ, इस बार खेलों का दायरा कुछ सिमटा हुआ है। 2022 में बर्मिंगम में हुए संस्करण में जहाँ 19 खेल थे, तो वहीं इस बार सिर्फ 10 हैं। बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, स्क्वाश और टेबल टेनिस जैसे वो तमाम खेल जिसमें भारत ने ढेरों पदक जीते, वो इस 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है।
2: इसलिए कुल पदकों की संख्या कम होना तय है, और बता रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रतिनिधि हिमिका चौधरी।
5: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 मेडल्स हम लेके आए। जैसा कि सबको पता है अब कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन्स हैं, हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इस वाले ग्लासगो CWG में नहीं है।

0: है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा।
1: इसी साल जापान में एशियन गेम्स भी होने वाले हैं, जिनकी तैयारियों के लिहाज से भी कॉमनवेल्थ गेम्स बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और भारत की महानतम धावकों में से एक पीटी उषा से बेहतर ये कौन जानता है।
2: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड। एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एनीवे 2 मंथ्स इज देयर दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस। हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा कॉम्पिटिशन तो इधर ऑर्गेनाइज किया है, बट फिर भी व्हाट आर ऑल द चेंजेस वी हैव टू

0: बेहतर ये कौन जानता है।
1: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड। एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एनीवे 2 months इज देयर दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस। हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा कॉम्पिटिशन तो इधर ऑर्गेनाइज किया है, बट फिर भी वॉट आर ऑल द चेंजेस वी हैव टू डू, ऑल टीम विल बी देयर।
0: खेलों के औपचारिक शुभारंभ से पहले ही भारत ने जश्न मनाने की पहली वजह हासिल कर ली है।
2: 2021 में भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने वाली लवलीना बोरोगेन को महिलाओं के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है, यानी एक मेडल तो कंफर्म्ड है। उनका सेमीफाइनल मुकाबला 31 जुलाई को टुवालू की तफाकी से होगा।
0: गुरुवार 23 जुलाई को भारत का अभियान लॉन बॉल से शुरू हुआ, वही खेल जिसने बर्मिंघम 2022 में भारतीय खेल इतिहास को एक नई पहचान दी थी। लवली चौबे, पिंकी सिंह, नेमोनी सेकिया और रूपा रानी तिर्की की चौकड़ी ने विमेन फोर्स में 2022 में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था, तो वहीं पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया था।
2: इस बार लॉन बॉल्स में ये इवेंट नहीं है, 2026 में केवल सिंगल्स यानी एकल वर्ग और पेयर्स यानी युगल वर्ग को जगह मिली है। साथ के साथ इस बार बाहर नेचुरल ग्रास के बजाय ये खेल इंडोर्स यानी अरीना के अंदर कारपेट वाली घास पर खेला जाएगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। खिलाड़ियों ने एक हफ्ता पहले ही वेन्यू पर पहुंच जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी, और बता रहे हैं टीम के सदस्य नवनीत सिंह।
3: It's a different format that the Commonwealth Games hosted for this year in the 2026 Birmingham was a grass green and this Glasgow is indoor carpet. So we are going a few weeks ahead of the games in Britain for the same to practice on that. So definitely that's going to help us to get us a little better and give us advantage over the new format and play our best with the very high quality players in Glasgow.
0: उसका असर देखने को मिला। विमेन पेयर्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी की जोड़ी ने माल्टा को रोमांचक मुकाबले में हराकर जीत के साथ अभियान की शुरुआत कर दी है।
2: दोनों टीमों ने एक एक सेट जीता, जिसके बाद टाई ब्रेकर में भारतीय जोड़ी ने बाजी मारी। इनका अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल ने मौजूदा आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन कनाडा के रायन बेस्टर को हराया और अगले दौर में प्रवेश पा लिया। उनका अगला मुकाबला फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से शुक्रवार 24 जुलाई को होगा। पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीदें भारतीय प्रशंसकों को एथलेटिक्स में हैं, जिसमें सबसे आगे नाम है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोट के चलते 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे, और पिछले साल हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ नीरज ने किसी इवेंट में टॉप 2 में फिनिश नहीं किया। लेकिन इस सीजन में दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर दूर अपना भाला फेंक नीरज ने ये दिखाया कि जीत की भूख उनमें अभी भी बरकरार है।
4: मैं काफी खुश हूं अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला, तो मैं काफी खुश हूं अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी।
2: हालांकि जैवलिन थ्रो में कॉम्पिटिशन भी उतना ही तीव्र है। नीरज के आर्च राइवल माने जाने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पिछले संस्करण में 90.18 मीटर की दूरी तय कर गोल्ड मेडल जीता था, जिसको बचाने के लिए वो मैदान पर उतरेंगे। दूसरी तरफ श्रीलंका के रुमेश पाथिरागे, जिनके नाम 92.62 मीटर की दूरी तय करने का रिकॉर्ड है, वो भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को तो भूलिएगा मत, जिन्होंने 2022 में दोहा डायमंड लीग में 93.07 मीटर की दूरी तय कर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड स्थापित किया था।
0: दूसरा बड़ा नाम है मुरली श्री शंकर, बर्मिंघम 2022 लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता था, लेकिन करियर थ्रेटनिंग इंजरी के चलते इन्हें 2024 का पेरिस ओलंपिक्स मिस करना पड़ा था। लेकिन मुरली श्री शंकर ने चोट से उभर कर मजबूत वापसी की और अब ग्लासगो में दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है।
2: लॉन्ग जंप के अलावा हाई जंप में सर्वेश कुसारे ने हाल ही में 2.31 मीटर की ऊंची कूद लगा नेशनल रिकॉर्ड सेट किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उनसे भी पदक की उम्मीदें हैं।
0: साथ ही दिखेंगे तेजस्विन शंकर, हाई जंप में भारत का

0: पहला मेडल 2022 बर्मिंगम में इन्होंने जिताया था
1: और इस वर्ष ये डेकेथलॉन में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वहीं ट्रिपल जंप में नजरें होंगी एक और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर पर, प्रवीण चित्रवेल, जो कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे स्थान पर आए थे, यानी पदक जीतते जीतते रह गए थे। 2018 के खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में पहली बार इन पर नजरें गई थी, जिसके बाद एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ये पदक जीत चुके हैं। क्या इस बार कॉमनवेल्थ में भी ये पदक विजेता बनेंगे? वहीं 100 मीटर की दौड़ में नजरें होंगी 10.09 सेकंड में दौड़ पूरी करने वाले नेशनल रिकॉर्ड होल्डर मॉडर्न फ्लाइंग सिख गुरिंदर वीर सिंह पर।
0: नेशनल रिकॉर्ड होल्डर्स की बात चली है तो 200 मीटर में आप अनिमेश कुजूर को देखना मत भूलिएगा। महिलाओं में नजरें होंगी पारुल चौधरी पर। 2023 हांगचाओ एशियन गेम्स में इन्होंने 5000 मीटर की दौड़ और 3000 मीटर की स्टीपल चेस में भी स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ये भारत का प्रतिनिधित्व करती 3000 मीटर स्टीपल चेस में नजर आएंगी।
1: लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह पुरुषों की 10000 मीटर और 5000 मीटर, वो दोनों इवेंट्स जिसमें वो मौजूदा एशियन चैंपियन हैं, अपनी दावेदारी पेश करेंगे।
0: अब बात प्रियंका गोस्वामी की, पहली भारतीय महिला जिन्होंने रेस वॉक में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जितवाया था।
1: पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर देव मीना और कुलदीप कुमार पर भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होंगी।
0: शॉर्ट पुट में दो बार एशियन गेम्स चैंपियन बन चुके तजिंदर पाल तूर प्रबल दावेदारी पेश करते नजर आएंगे।
1: ये तो बात रही एथलेटिक्स की, अब रुख करते हैं बॉक्सिंग का।
0: मिडिल वेट कैटेगरी में लवलीना का मेडल तो सुनिश्चित है ही, पर फेदर वेट कैटेगरी में उम्मीदें जैस्मिन लंबोरिया से भी कुछ कम नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप दोनों में ही जैस्मिन के नाम गोल्ड मेडल है और 2023 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल है।
1: दो बार की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी चौधरी भी 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।
0: पुरुषों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में अपना कॉमनवेल्थ डेब्यू कर रहे जादूमणि सिंह भारत का परचम लहराने का ख्वाब लिए रिंग में उतरेंगे। इस साल इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में रजत पदक जीता था और इस प्रदर्शन को दोहराने की पूरी कोशिश रहेगी।
1: पुरुषों की मुक्केबाजी में अंकुश, नरेंद्र, सचिन, सुमित और कपिल पोखरिया से भी अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा है और बता रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह।
2: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
0: अब बात करते हैं स्विमिंग की। 2016 रियो ओलंपिक्स और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का स्विमिंग में प्रतिनिधित्व करने वाले साजन प्रकाश भी चुनौती पेश करते नजर आएंगे।
1: इनके अलावा नजरें होंगी श्री हरि नटराज पर, जिन्होंने 2019 में काठमांडू में हुए साउथ एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण पदक जीते थे।
0: वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू को कैसे भूल सकते हैं। कल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में इन्हें भारतीय दल का ध्वजवाहक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
1: अब बात कर लेते हैं आज शुक्रवार 24 जुलाई को होने वाले इवेंट्स की। भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे द अरीना में पुरुषों के आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के टीम इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड खेले जाएंगे, जिसमें तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह भारत की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आएंगे।
0: फिर दोपहर 3:40 पर शुरू होगा पैरा स्विमिंग मेंस S13 100 मीटर फ्री स्टाइल, जहां दिखेंगे रवि वीरा वेंकटा, भवानी कार्तिक और इमाम अली।
1: पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्री हरि नटराज के प्रदर्शन पर नजर रखिएगा।
0: पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों में मेडल इवेंट्स में अशोक और परमजीत कुमार नजर आएंगे।
1: तो वहीं महिलाओं में पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक लाने की उम्मीद होगी सुमन देवी और जसप्रीत कौर से। रात 10 बजे के करीब इसी इवेंट का फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा। लॉन बॉल्स में आज जीत हासिल करने वाली पिंकी और रूपा रानी तिर्की की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लोहा लेती नजर आएगी। तो वहीं मेन सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल फॉकलैंड आइलैंड्स के सिसिल अलेक्जेंडर से भिड़ेंगे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Well, welcome back, listeners. You know, before coming into the studio today, I was looking at the calendar. And today is July 24th, which is International Self-Care Day. Now, usually when people hear self-care, they picture massive life overhauls, expensive retreats, or rigid daily routines. But sitting here, looking at the morning light hitting while coming to the studio, I think it's much simpler than that. Self-care is just allowing yourself to pause. It's choosing not to rush through a moment that deserves your attention. We are going to talk about a little about this, just a little gentle reminder between the tracks. This is your RJ Tani on FM Rainbow 101.9. Here's a track to slow down your momentum.

I was just wondering, isn't Friday the only day where morning itself feels distinct? अलार्म वही होता है, रोड्स वही होते हैं, ट्रैफिक कभी वही कैहोटिक नॉइस, फिर भी पता नहीं क्यों एयर फील्स अ लिटिल लाइटर, मूड थोड़ा हल्का लगता है. मे बी बिकॉज समवेयर डीप इन आर माइंड्स द वीकेंड हैज ऑलरेडी बिगन. गुड मॉर्निंग वंस अगेन. अगर आप लास्ट 1 आवर से मेरे साथ हो, वेलकम बैक टू द स्पेस. अगर अभी अभी गाड़ी स्टार्ट की है, ट्यूनिंग इन जस्ट नाउ, यू आर राइट ऑन द टाइम. दिस इज योर राजतनी एंड यू आर लिसनिंग टू FM रेनबो 101.9. रेनबो ब्रिंग्स कलर्स टू योर लाइफ. अगले का घंटा हम सिर्फ म्यूजिक नहीं सुनेंगे, कुछ पुरानी बातें याद करेंगे, थोड़ा हंसेंगे और शायद भागती हुई जिंदगी से छोटी सी चीज चुरा के घर ले जाएंगे. वैसे टुडे इज इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे. नाम सुनते ही दिमाग

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंगड़ी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।

अच्छा, एक स्मॉल कन्फेशन। मैं उन लोगों में से हूँ जो फ़ोन चार्ज पे लगाने के बाद भी कंटिन्यूअसली स्क्रीन को स्टेयर करता रहता हूँ, जस्ट वॉचिंग द बैटरी परसेंटेज क्रॉल अप 21, 22, 23, जैसे मेरे देखने से इलेक्ट्रॉन थोड़े तेज़ भागेंगे। हम सब हंसते हैं ना ऐसे सिली हैबिट्स पे, बट यू नो समटाइम्स वी ट्रीट आवर सेल्फ एग्जैक्टली लाइक दैट अनचार्ज्ड फोन। वी ड्रेन आवर बैटरीज टू जीरो, स्ट्रेस से माइंड हैवी हो जाता है, बट वी कीप पुशिंग। वी लुक एट आवर सेल्फ एंड से बस आज का दिन निकल जाए। और ट्विस्ट पता है क्या है, कल सुबह उठ के वी रिपीट द एग्जैक्ट सेम सेंटेंस। इसीलिए परहैप्स टुडेज सेल्फ केयर डे फील्स नेसेसरी। इट रिमाइंड्स अस दैट टेकिंग अ पॉज इज नॉट अ वीकनेस। अपने क्लाउड को क्लियर करना, रिचार्ज होना इज अ प्रायोरिटी। वैसे अगर अब तक आपकी मॉर्निंग चाय या कॉफी नहीं हुई है, कंसिडर दिस योर ऑफिशियल क्यू। गो गेट इट, टेक योर टाइम, द नेक्स्ट ट्रैक विल कीप योर कंपनी।

0: Rainbow 101.9.
1: Well, पिछले ट्रैक के दौरान आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू माई सेटिंग्स. हम सबके स्मार्टफोन में एक मॉडर्न डे मिरर होता है, वी कॉल इट स्क्रीन टाइम. कभी चेक किया है ये डिजिटल हेल्थ डैशबोर्ड को? सडन शॉक लगता है ना, गॉड इतने घंटों से मैंने मेरा फोन को देखते ही रह गया. देन आई थॉट काश लाइफ का भी एक एनालिटिकल मीटर होता जो काउंट करता है पूरे दिन में कितने मिनटों हम जेन्यूनली खुश थे और कितने घंटों से हमने बस इनविंसिबल टेंशन में कंज्यूम कर दिए. सेल्फ केयर टारगेट्स हाई हैंड नहीं होते. टुडे लेट्स चेंज द मेट्रिक. स्क्रीन टाइम को थोड़ा इग्नोर मारते हैं एंड लेट्स बम्प अप द स्माइल टाइम. एक छोटा स्लो ट्रैक, एक रैंडम फ्रेम की ब्यूटी और जस्ट अ क्वाइट लंच, दैट्स इनफ टू रीसेट. लिसन टू दिस नेक्स्ट ट्यून एंड वी विल सी वेयर इट विल टेक यू.

और देखते ही देखते 11 AM का फर्स्ट हाफ स्मूथली स्लिप हो गया। टाइम इज अ ब्यूटिफुल वियर्ड डायमेंशन, इजंट इट?

देखो, इट एक्ट्स लाइक अ हैवी रॉक दैट रिफ्यूजेस टू मूव, और फ्राइडे आते ही इट रन्स लाइक वाटर थ्रू फिंगर्स। इफ़ यू आर करेंटली वेटिंग आउट देयर इन द सिटी किसी बोरिंग मीटिंग के ख़त्म होने का, या सिटिंग एट अ ट्रैफिक जंक्शन वेटिंग फॉर अ डिलेड डिलीवरी, और सिंपली वेटिंग फॉर द वीकेंड क्लॉक टू स्ट्राइक, आई होप वॉट एवर यू आर वेटिंग फॉर टर्न्स आउट टू बी एंटायरली वर्थ इट। तब तक होल्ड ऑन टू द स्पेस। दिस इज योर आरजे थनी कीपिंग इट स्टेडी ऑन FM रेनबो 101.9। रेनबो ब्रिंग्स कलर्स योर लाइफ, स्लोइंग डाउन द मोमेंटम विद दिस ब्यूटिफुल मेलोडिक क्यूरेटेड जैज़ फॉर द मूड यू आर इन राइट नाउ। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लिसन।

0: आपके साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी द्वारा प्रश्न पत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
1: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
0: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both Houses of Parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protest over the NEET paper leak case and student protest. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, the House paid tributes to the martyrs of the Indian Armed Forces who gave the supreme sacrifice during the Kargil War. Later, when the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering, demanding resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Mr. Birla urged opposition members to cooperate in running the House, but they did not pay heed to the advice of the Speaker, which led to the adjournment of the House till 12 noon. The upper house also observed silence as a mark of respect to the memory of the martyrs. After that, the chairman tried to take up 0 hour and allowed leader of opposition Mallikarjun Kharge to speak. Mr. Kharge raised the issue of NET paper leak and student protest over the matter.

Hello everybody, the time at the studio clock is 12:10 right now. Puri city apne midday hustle mein hai, screens open hoga, desk aur screens par hamesha work karte rehte is waqt ko. गुड आफ्टरनून. अगर आप पिछले घंटे से मेरे साथ हैं, वेलकम बैक. और अगर अभी अभी गाड़ी में या घर पे रेडियो ऑन किया है, यू आर राइट ऑन टाइम. दिस इज योर आरजे तनी एंड यू आर लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9. रेनबो एड्स कलर्स योर लाइफ. लोग अक्सर कहते हैं

बारह बजे का टाइम बड़ा फ्लैट होता है, ना सुबह का फ्रेशनेस ना शाम की सुकून, बट ऑनेस्टली इट्स द बेस्ट टाइम टू जस्ट हिट पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रीसेट। स्टे विथ मी, अगले एक घंटा पूरा चिल ट्रैक्स और थोड़ी सी रिलैक्स करने वाली बातें शेयर करेंगे।

वेल, इट्स ऑलमोस्ट 12:30। मैं यहाँ कंसोल पे बैठ के ट्रैक्स शेड्यूल कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ, हम 2023 के एज वाले लोग ना बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वैसे सेल्फ केयर की बातें तो सुबह से चल रहे हैं, बट प्रैक्टिकली दिन के बीच में ही हमारा एनर्जी बैटरी 10% लगने लगती है। अगर आपको भी अभी ऐसी फीलिंग आ रही है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। कोई लाइफ मास्टर क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अगले 3 मिनटों के लिए सब साइड में रखो, हैव सम वाटर, रिलैक्स योर शोल्डर्स, दैट्स योर सेल्फ केयर फॉर द आवर। मैं आरजे तनी, योर कंपेनियन ऑन FM रेनबो 101.9। लेट दिस नेक्स्ट ट्रैक डू द टॉकिंग।

0: Rainbow 101.9।
1: पता है, फ्राइडे आफ्टरनून का एक अलग ही कंफर्ट होता है। काम अभी अभी बाकी है, दिन अभी खत्म नहीं हुआ, पर दिमाग को पता है कि वीकेंड बहुत पास है। मेरे सेल्फ केयर तो बस यही है, अच्छा म्यूजिक चलाओ और आराम से अगले ट्रैक का वेट करो। इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पे आपका पता नहीं, पर मेरा फ्राइडे तो स्मूथ जा रहा है। मैं हूं तनी एंड यू आर विथ मी ऑन एफएम रेनबो 101.9। सुनो इसे और अपना मूड को कूल करो।

And with that, our 12 p.m. hour completes its run. Time passes smoothly when the vibe is right. But listen, अगले एक घंटा सीन थोड़ा बदलने वाला है. अब मैं अकेले नहीं बोलूंगा. I will get to talk to everyone out there. अगले आवर लाइंस ओपन हो रहे हैं फॉर आवर फोन इन आवर. शॉर्टली आई शेयर द एग्जैक्ट कॉल डिटेल्स एंड आई एम जेन्युइनली वेटिंग टू हियर योर वॉइसेस. हमारा टॉपिक चाला सिंपल. इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पर अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए ऐसी कौन सी एक हैबिट है जो आप एवरीडे फॉलो करते हो. जैसे सुबह उठ के बिना फोन छुए हाफ एन आवर वॉक पे निकल जाना, या दिन में एक बार पूरे शांति से एक अच्छा सा मेडिटेशन करना, डेली कोंचम फ्रेश फ्रूट्स तिनडम कूडा अयुंडच्चु, या रात को सोने से पहले एक बुक का सिंगल पेज पढ़ना. What is that one daily habit for your body and mind? Think about it. Lines are opening up soon. This is your RJ Tani on FM Rainbow 101.9. Rainbow brings colors to your life.

101.9. 1 o'clock, Friday midday, standard mode fully active. गुड आफ्टरनून वंस अगेन. अगर आप पिछले 3 घंटों से कंटिन्यूसली मेरा स्ट्रीम लो उन्टे, थैंक यू सो मच फॉर द कंपनी. और अगर अभी अभी लाइंस पर कनेक्ट हुए हो, यू आर राइट ऑन टाइम. दिस इज योर आरजे तनी एंड यू आर लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9. रेनबो एड्स कलर्स योर लाइफ. वेलकम टू द फोन इन आवर. पूरी दोपहर मैंने अकेली बात करा है. But for this next hour, the floor is entirely yours. Studio lines open ho chuki hai. Number perfectly simple hai. You can dial to 0402323300030 or 0402323481 or 0402970715. Dial kijiye. I'm waiting.

टू पिकअप योर कॉल्स। एंड इंटरनेशनल सेल्फ के डे पर हमारा टॉपिक बहुत सीधा है, आप अपने फिजिकली और मेंटली को फिट रखने के लिए ऐसी कौन सी एक हैबिट है जो आप एवरीडे फॉलो करते हो, चाहे वो सुबह की 15 मिनट वॉक हो सकता है, पूरे दिन में बेसलाइन वाटर इंटेक मेंटेन करना हो, या रोज कुछ गैप तीसकोनी फ्रेश फ्रूट्स तिनाम कूड़ा उंडचो, या सोने से पहले माइंड को क्लीन करने के लिए लाइट जर्नलिंग करना। व्हाट इज योर वन डेली नॉन नेगोशियबल हैबिट, मुझे बताइए। नंबर्स आर एक्टिव राइट नाउ, बट लाइंस पर आने से पहले लेट्स सेटल डाउन विद दिस ब्यूटिफुल ट्रैक। इसके ठीक बाद डायरेक्ट कॉल्स पिक करेंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫార్మ్స్ ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓలకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎనుమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: Well, welcome back. Okay, a caller abhi dial kar rahe hai. Dekhenge. Hello.
2: Hari Om
1: sir. Aapka naam aur kahan se baat kar rahe ho?
2: Mera naam Vilas Tendulkar hai. Main Nalla Kunta Bhagyanagar mein rehta hu.
1: Tendulkar ji, welcome. Aaj ka topic pata hai na?
2: Haan ji, maine suna hai. Aapne pucha hai ki अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अच्छा रखने के लिए क्या करना है.
1: जी सर,
2: ठीक है. उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मेरा दिन शुरू होता है सवेरे 4 बजे.
1: ओ, यस सर.
2: 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, यानी कि इसके विपरीत मैं ऐसे कहूंगा कि सवेरे मैं जब उठता हूँ तो 4 बजते हैं.
1: हाँ सर.
2: और उसके पश्चात तैयार होकर के मैं योग कक्षा लेने के लिए जाता हूँ.
1: अच्छी बात है सर, योगा तो हम सब लोग करना है.
2: हाँ, तो सवेरे मैं 5:30 से लेकर 6:30 तक योग कक्षा लेता हूँ और ये निशुल्क लेता हूँ.
1: सुपर सर.
2: भारतीय योग संस्थान नाम की एक संस्था है जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है.
1: अच्छा.
2: अंतर्गत मैं काम करता हूँ.
1: ओह, वंडरफुल सर.
2: तो योग कक्षा लेने के पश्चात मैं अपना अभ्यास करता हूँ.
1: बहुत
2: घंटे के लिए मेरा अपना अभ्यास होता है. मेरे अपने आसन होते हैं, प्राणायाम होता है और
1: जी.
2: ध्यान होता है. यह सब करके घर आने तक मुझे 9:30 बज जाते हैं.
1: ओ, इतने घंटे तो से योगा करे तो. हाँ सर, बहुत हेल्दी है ये सब. हाँ सर, बोलिए.
2: हाँ जी, तो ये मेरा नित्य नियम है
1: सर.
2: और केवल योगासन, प्राणायाम और ध्यान नहीं करवाता हूँ मैं. मेरे साधकों को उनके कुछ जो व्याधियां होती है उसके लिए मुद्राएं भी बताता हूँ.
1: वंडरफुल सर, वंडरफुल.
2: उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी, निम्न रक्तचाप यानी कि लो बीपी, या मधुमेह यानी डायबिटीज, ये लोग जो पीड़ित होते हैं उनके लिए मैं मुद्राएं बताता हूँ और उन मुद्राओं का अभ्यास करने से आपको गोली या इंजेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है.
1: वंडरफुल सर, ये आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है और मन बह गया मेरा. और बहुत सारा सीखा हूँ मैंने भी. योगा तो जरूर करना है. और बहुत अच्छे से बोले सर आपने आज.
2: और एक बात बताना चाहूंगा
1: सर,
2: इसके साथ साथ मैं एक्यूप्रेशर द्वारा ट्रीटमेंट भी करता हूँ, उपचार भी करता हूँ. यानी जो लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन का जो दर्द होता है ना.
1: हाँ सर.
2: उससे पीड़ित है, या कुछ लोगों को कमर दर्द है, या घुटनों का दर्द है, या सियाटिका नाड़ी से होने वाला दर्द है, तो इसके लिए मैं एक्यूप्रेशर से उपचार करता हूँ.
1: वंडरफुल सर, बहुत अच्छा लगा सर.
2: एक्यूप्रेशर का जो उपचार है
1: sir.
2: उसका रिजल्ट 5 मिनट के अंदर आ जाता है.
1: ओह, दैट्स रियली नाइस सर.
2: एक सप्ताह भर गोली खाइए, एक महीना भर गोली खाइए, ऐसा नहीं होता है. गर्दन का दर्द है तो मैं एक्यूप्रेशर से उपचार करता हूँ और वह व्यक्ति तुरंत ठीक हो जाता है.
1: ओह, सुनकर बहुत अच्छा लगा सर. इतने सारे चीजें आप कर रहे हो और ऐसे ट्रेडिशनल हमारे तरीके के यूज करके, बहुत अच्छा लगा सर. और जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर.
2: आपने और एक बात मुझसे हमसे पूछी थी
1: सर,
2: रोज क्या पढ़ते हो, एक पन्ना कुछ पढ़ते हो का, ऐसा
1: हाँ,
2: आपने कहा था ना.
1: जी सर,
2: तो
1: यस सर.
2: सोने से पहले मैं प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हूँ.
1: ओ अच्छा सर, वेरी नाइस.
2: विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता हूँ, उसके पश्चात सो जाता हूँ.
1: ओ, वो अच्छा लगता है ना सर, जब एक किताब में एटलीस्ट कुछ तो पढ़ के सो गया तो बिना फोन यूज करके, बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच फॉर डायलिंग इन सर.
2: और बोलूंगा मैं, विष्णु सहस्त्र नाम में इतनी शक्ति है
1: कि
2: वो जो हम शब्दों का उच्चारण करते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारी व्याधियां अपने आप दूर हो जाती है.
1: सुपर सर, बहुत सुनकर अच्छा लगा मुझे. ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.

0: पानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई.
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट.
1: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
0: It's not just food.
1: It's culture, history and flavor rolled into one.
0: Jashne Hyderabad.

0: ప్రభుత్వం 750కి పైగా ఉత్పత్తుల పైన బిఏఎస్ మార్క్ ను తప్పనిసరి చేసింది. ఈ రోజే బిఏఎస్ యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
1: సోదరా, భద్రత విషయంలో కామెడీ చేయకండి.
2: బిఏఎస్, నమ్మకానికి నాణ్యతకు స్ఫూర్తి.
3: జారీ చేయవారు బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్, హైదరాబాద్.
4: और देखते देखते ही लाइंस लॉक करने का समय आ गया है. इस घंटे में मैंने कितने लोगों की बातें सुनी और आपकी सबके डेली हैबिट सुनकर मेरा दिल में बहुत मन बह गया. छोटी छोटी बातें हैं पर खुद की ख्याल रखने की डिफरेंट तरीके. ठीक है, मेरा 4 घंटे का शिफ्ट यहीं पर ख़त्म होता है, पर रेनबो FM 101.9 पर गाने और खुशियाँ कभी नहीं रुकती. स्टूडियो में मेरे ठीक बाजू में अगले RJ पूरी तैयारी के साथ बैठ चुके हैं 2 PM सेगमेंट के लिए. उनके पास बहुत सारे अच्छे गाने और देर सारी मस्ती रेडी है, तो अपना रेडियो बिल्कुल मत बदलना. इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पर स्टूडियो से बाहर जाते हुए बस एक छोटी सी बात बोलूंगा. जिंदगी में दौड़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, पर उनके बीच में थोड़ा सा रुककर सांस लेना भी मत भूलना. शरीर का ख्याल थोड़ा सा, मन की शांति थोड़ी सी, और फेस पे एक छोटी सी स्माइल. जागृत का उनंडी. मैं हूं आपका RJ तनी. अब आपसे विदा लेता हूं. रेनबो FM 101.9, रेनबो ब्रिंग्स कलर्स टू योर लाइफ. खुश रहिए और सुनिए इस कमर्शियल को. एक्चुअली या नमस्ते.
5: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: दोस्तों 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नायरंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। सबसे पहले आज नायरंग में पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील आपको बता देते हैं। नायरंग का आगाज होगा किरते कलाम पाक से, जिसे पेश करेंगे फहद साहब। उसके बाद आप सुनेंगे हर्फ ताबिंदा। तहरीर पेशकश होगी डॉक्टर अजमतुल्ला खान साहब की, और फिर डॉक्टर माइक पर प्रोग्राम में आप सुनेंगे डॉक्टर इरफाना तस्नीम साहबा को, जो पिथी की पथरी के असबाब और इलाज के बारे में हमें बताएंगी। डॉक्टर इरफाना तस्नीम साहबा से ख़ास बातचीत की है मोहतरमा सना अलमास साहबा ने। उसके बाद आप सुनेंगे गीत सुरीलेजा प्रोग्राम में दिलकश फिल्मी नगमे, और प्याम शब के साथ नायरंग इख्तिताम पजीर होगा। तहरीर पेशकश होगी जनाब जैदी साहब की। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और समाअत फरमा करते हैं करते कलाम पाक।
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: दोस्तों, अभी आपने सुना किरते कलाम पाक फहद साहब की आवाज़ में, और अब पेश है हर्फ ताबिंदा। तहरीर पेशकश है डॉक्टर मोहम्मद अजमतुल्ला खान साहब की। लीजिए, समाप्त कीजिए।
1: के लगवी माने बहादुरी, दिलेरी, शुजात, मर्दानगी, हौसला, हिम्मत के हैं। इसके अलावा जुर्रत के माने कुव्वत, तौफीक, ताकत, दसरस, खसत, अजम और तमन्ना के भी मुराद लिए जाते हैं। जुर्रत का हकीकी मफहूम सिर्फ बहादुरी दिखाना या जिस्मानी खतरात का सामना करना नहीं है, ये इससे बढ़कर कहीं है। जुर्रत दरअसल खौफ की मौजूदगी में भी अपने उसूलों पर कायम रहते हुए दुरुस्त और मुनासिब कदम उठाने का नाम है। ये कुव्वत इरादी, अखलाकी जुर्रत और सब्र का मजमुआ है। जुर्रत की रूह दरअसल इंसान के अंदर मौजूद वो ताकत है जो इसे नाखुशगवार हालात का सामना करने, इन पर काबू पाने के काबिल बनाती है। ये मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर होती है। जैसे अखलाकी जुर्रत, ये किसी भी गैर मुनसिफाना या गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत का नाम है। ये उस वक्त ज़्यादा अहम हो जाती है जब आप अकेले हों, आपके खिलाफ बहुत से लोग हों। सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़े होना चाहिए, इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़ती है। यही अखलाकी जुर्रत है। जज्बाती जुर्रत अपनी कमजोरियों, गलतियों और एहसासात को तस्लीम करने का नाम है। इसमें दूसरे लोगों से माफी मांगने की हिम्मत भी शामिल है। अपने दिल की बात कहना और नुसरत होने के बावजूद आगे बढ़ना जज्बाती जुर्रत है। तख्लीकी जुर्रत, ये नए ख्यालात और हालात और मंसूबों को हकीकत का रूप देने का नाम है। इसके लिए तनकीद या नाकामी के खौफ के बावजूद कुछ करने की हिम्मत जरूरी है। रिवायत से हटकर कुछ नया करना या कोई नई ईजाद करना इसी जुर्रत की मिसाल है। खौफ पर काबू पाना, जुर्रत का मतलब खौफ की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि खौफ के बावजूद अपने इरादे पर कायम रहना। ये एक बहादुर शख्स को भी डर लगता है, लेकिन वो अपने डर को अपनी राह में रुकावट नहीं बनने देता। हकीकी जुर्रत यह है कि आप जानते हैं कि आप जो करने जा रहे हैं इसका नतीजा खतरनाक हो सकता है, इसके बावजूद भी आप उसे कर गुजरते हैं। समाजी जुर्रत, ये मुख्तलिफ समाजी हालात में अपनी राय जाहिर करने या अपने आप को असलियत के साथ पेश करने की हिम्मत है। ये जुर्रत हमें माशरती दबाव, तनकीद के खौफ के बगैर अपने आप को ऐसे ही पेश करने की इजाज़त देती है जैसे हम हैं। तब्दीली और तरक्की, जुर्रत के बगैर इंसानी माशरे में कोई तरक्की मुमकिन नहीं। हर बड़ी ईजाद, हर बड़ा इनकलाब और हर अहम तब्दीली जुर्रतमंदाना फैसलों का नतीजा है। ये इंसान की जुर्रत है जो इसे नया रास्ता तलाश करने पर, पुरानी रस्मों को तोड़ने और नए ख्यालात को अपनाने पर उकसाती है, जिन्हें हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नई चीज़ें सीखने की हौसला अफजाई करती है। कमजोरियों का एतराफ़ और माफ़ी मांगना, जुर्रत का एक अहम पहलू अपनी गलतियों को तस्लीम करने की हिम्मत है। अपनी अना को एक तरफ रखकर अपनी कमजोरियों का एतराफ़ करना और किसी से माफ़ी मांगना एक बड़ी जुर्रत का काम है। ये अमल इंसान को मजीद मजबूत बनाता है। जुर्रत और अमली जिंदगी, जदीद दौर में जुर्रत का इतलाक हर शोबे में होता है। एक कामयाब रहनुमा को जुर्रत की जरूरत होती है ताकि वो मुश्किल फैसले कर सके, और एक कामयाब कारोबारी शख्स को इसकी जरूरत होती है ताकि वो खतरा मोल ले सके। इस तरह एक फर्द को भी जाती जिंदगी में जुर्रत की जरूरत होती है ताकि अपनी जिंदगी को अपनी शरायत पे जी सके। जुर्रत का हकीकी मफहूम एक जामे सलाहियत है जो अखलाकी, जज्बाती, तख्लीकी और

समाजी पहलुओं पर मुश्तमिल है। अब यह सिर्फ जिस्मानी बहादुरी नहीं बल्कि अखलाकी, जज्बाती, समाजी जुर्रत भी है। आज के दौर में जुर्रत का मतलब सिर्फ खौफ की अदम मौजूदगी नहीं बल्कि एक नफसियाती अमली सलाहियत है जो इंसान को खौफ के बावजूद अपने मकासिद और अखलाकी उसूलों पर कायम रहने की हिम्मत देती है। ये सिर्फ एक जज्बाती खूबी नहीं बल्कि एक अमली महारत है जो इंसान को आज की पेचीदा दुनिया में कामयाबी और खुशहाली के लिए नागुजीर है। जुरत और इंसानी जिंदगी का एक बुनियादी और नागुजीर जुजू है। ये सिर्फ खतरात से लड़ने की सलाहियत नहीं बल्कि ये इंसान की शख्सियत को मुकम्मल करने

0: बल्कि ये इंसान की शख्सियत को मुकम्मल करने वाली लाजमी सिफत है। जुरत के बगैर इंसान किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो पेशावराना जिंदगी हो, जाती ताल्लुकात हो या अखलाकी जद्दोजहद। ये वो अंदरूनी सलाहियत है जो हमें मुश्किलात का सामना करने और नामुमकिन को मुमकिन बनाने की तहरीक देती है। जुरत एक ऐसी खूबी है जो इंसान को हकीकी मानों में आज़ाद बनाती है। ये हमें डर, खौफ और समाजी दबाव की जंजीरों से आज़ाद करके बामाना और कामयाब जिंदगी गुजारने के काबिल बनाती है। जुरत के बगैर जिंदगी सिर्फ एक वजूद है, लेकिन जुरत के साथ बामकसद जिंदगी है।
1: दोस्तों, अभी आपने सुना हर्फ ताबिंदा, तहरीर पेशकश थी डॉक्टर मोहम्मद अजमतुल्ला खान साहब की। जी दोस्तों, जुरत वो चिराग है जो मुश्किल रास्तों में भी कदमों को मंजिल का यकीन दिलाता है। वाकई जुरत खौफ का ना होना नहीं है, बल्कि जुरत खौफ के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा करना है तो हमें जुरत का मुजाहरा करना पड़ेगा। यही वजह है कि कामयाब लोगों के पीछे उनकी जुरतमंदाना कहानियाँ भी होती हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बारी है डॉक्टर माइक पर की। दोस्तों, डॉक्टर माइक पर प्रोग्राम में आज बातचीत की गई है डॉक्टर इरफाना तस्नीम साहबा से, जो पित्थी की पथरी के असबाब और इलाज के बारे में हमें बताने जा रही हैं। डॉक्टर साहबा से बात की है मोहतरमा सना अलमास साहबा ने। तो लीजिए समाप्त करिए पित्ती की पथरी के बारे में डॉक्टर साहब और सना अलमास की ये ख़ास गुफ्तगू।
2: सेहतनामा प्रोग्राम के सुनने वाले सभी दोस्तों को सना अलमास बावजीर का पुरखलूस आदाब। इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर्स को बुलवाते हैं और अलग-अलग मुद्दों पर बातें करते हैं ताकि सेहत के मुताल्लिक आपकी मालूमात में इजाफा हो और आप उजागर रहें, बेदार रहें, चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। जैसा कि हम देख रहे हैं, खराबी सेहत के मामले सामने आ रहे हैं, तो आइए दोस्तों इसी मुद्दे पर मोहतरमा डॉक्टर इरफाना तस्लीम साहबा से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहबा, आपका हमारे स्टूडियो में दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल है।
3: जी, मधु करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी, डॉक्टर साहबा, नैरंग के सुनने वाले सभी सामाइन को हम ये बता दें कि आज हम निहायत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आज हम जानेंगे पित्ते की पथरी के मुतालिक। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि पित्ते की पथरी क्या होती है?
3: पित्ते की पथरी, गॉल स्टोन्स या गॉल ब्लैडर कैलकुलस, वो सख्त जर्रात होते हैं जो सफरे यानी बाइल में मौजूद कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या दूसरे मादों के जमने से बनते हैं। ये पित्ते में जमा हो जाते हैं और अगर ज़्यादा हो जाएं तो ये तकलीफदेह होते हैं। पित्ते की पथरी, इसके साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। कभी ये रेत के दाने के बराबर होती है तो कभी ये गोल्फ के बॉल के बराबर होती है। कुछ लोगों में सिर्फ एक ही पथरी पाई जाती है तो कुछ लोगों में ये मुतादिद यानी मल्टीपल पथरियाँ पाई जाते हैं।
2: डॉक्टर साहब, यूनानी तिब के मुताबिक इसका क्या नज़रिया है?
3: यूनानी तिब के मुताबिक जिस्म के अंदर चार अखलात होते हैं, यानी दम, सफरा, बलगम, सौदा। जब सफरा, जिसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है, इसका गलबा हो जाता है और
2: जी
3: इसका इखराज सही तरीके से ना हो तो ये जमने लगता है और पथरी बन जाता है। यूनानी माहरीन इसको तहज्जुरे सफरा यानी सफरे की पथरी बन जाना कहते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जिस्म में पित्ते की क्या अहमियत होती है?
3: पित्ता एक छोटा अजू होता है जो पेयर शेप्ड
2: जी
3: यानी नाशपाती के मानन नाशपाती की शक्ल का होता है और ये जिस्म में दाएं जानेब जिगर के
2: जी
3: बिल्कुल नीचे पाया जाता है। जिगर में सफरा यानी बाइल की पैदावार होती है और ये सफरा पित्ते में

0: स्टोर होता है या कॉन्सेंट्रेट यानी कि गाढ़ा होता है, और
1: जी
0: जब हम खाते हैं तो पित्त सिकुड़ जाता है, और इसके सिकुड़ने की वजह से सफरे का इखराज छोटी आंत में होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे सामान ये जानना चाहेंगे कि पित्त के अहम अफाल क्या है।
0: पित्त के अहम अफाल में सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि पित्त में सफरे का यानी बाइल स्टोर होता है और कॉन्सेंट्रेट होता है यानी पित्ता बाइल का जखीरा है। जब हम खाते हैं तो आंतों के हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन से एक इशारा मिलता है या सिग्नल मिलता है, और ये सिग्नल मिलने के बाद पित्ता बाइल को खारिज करता है या फिर रिफिल करता है। छोटी आंत में इसके बहाव को कंट्रोल करता है। ये बाइल के कॉम्पोजिशन को रेगुलेट करता है यानी सफरे में पानी की मकदार या नमकियात की मकदार कितनी होनी चाहिए इसका तनासुब तय करता है। ये सफरे को बिलियरी ट्रैक्ट और छोटी आंत के पहले हिस्से यानी डियोडेनम में सिक्रीट करता है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये सफरा होता क्या है और इसकी क्या अहमियत होती है, हमें तफसील से बताएं।
0: निज़ामे हज़म में सफरे का बुनियादी काम चर्बी को तोड़ना है जिसे हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। यूं कह सकते हैं कि ये चर्बी पर अपना काम करके इसका हाजिमा करता है। जब हम चिकनाई वाली खुराक लेते हैं और ये छोटी आंत में दाखिल होती है तो कोलेसिस्टोकाइनिन या सीसी के हार्मोन से इशारा पाते ही पित्ता सफरे का इखराज करता है और ये सफरा अपना काम चिकनाई पर शुरू करता है। बड़े जर्रात को छोटे छोटे जर्रात में तब्दील करता है यानी ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स करता है और जज्ब होने के काबिल बनाता है।
1: डॉक्टर साहब, जो पित्ते में पथरी पाई जाती है, क्या उनके कोई अकसाम होते हैं?
0: जी हाँ, उमूमन पित्ते में तीन तरह की या तीन किस्म की पथरियाँ पाई जाती है।
1: जी
0: पहली किस्म होती है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल की पथरी कहते हैं। ये उमूमन 80 से 85% यही
1: जी
0: तरह की पथरी पाई जाती है। ये पथरी बुनियादी तौर पर कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है या कोलेस्ट्रॉल पर मुश्तमिल होती है। ये पथरी नर्म और ज़्यादा जर्द रंग की होती है, कभी पीले से सब्ज रंग की होती है और ये मुख्तलिफ साइज में पाई जाती है। सफरा के अज्जा में अदम तवाज़ुन से कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ जाती है यानी जब नमकियात बाइल सॉल्ट्स और लेसिथिन में कमी आ जाती है तो इसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और ये पथरी की शक्ल अख्तियार कर लेता है।
1: जी
0: दूसरी किस्म वो होती है जिसे हम पिगमेंट स्टोन्स कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल की पथरी के बनिस्बत छोटी होती है और सिया या भूरे रंग की होती है। ये बुनियादी तौर पर बिलिरुबिन की बनी होती है। खून के सुर्ख खलियात यानी कि आरबीसीस के टूटने से बनती है। इनमें कैल्शियम और नमकियात की भी ज़्यादती होती है। फिर नमकियात बाइल की कमी की वजह से बिलिरुबिन घुल नहीं पाता और ये पथरी बन जाती है। तीसरी किस्म वो होती है जिसे हम मखलूत पथरी या फिर मिक्स स्टोन्स कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और नमक का मजमुआ होती है। ये पथरियाँ सख्त होती हैं और ये बार बार बनती हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि पित्ते की पथरी के क्या असबाब होते हैं?
0: इसके असबाब में सबसे अहम सफरे का गाढ़ा हो जाना है
1: जी
0: और जो लोग कम पानी पीते हैं उनमें भी ये एक सबब बन जाता है। जिस्मानी सरगर्मियों में कमी, ज़्यादा तली हुई मुर्गन ग़िज़ा लेने से, या फिर जो लोग मोटे होते हैं तो मोटापा भी एक असबाब है इसका, जिगर की कमज़ोरी की वजह से, या फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, या फिर जिन लोगों में शुगर बढ़ी होती है या ज़ियाबतीस के शिकार जो लोग होते हैं उनमें
1: जी
0: भी ये पाई जाती है, या फिर उन लोगों में जिनमें ज़हनी दबाव ज़्यादा होता है। आम तौर पर कोलेस्ट्रॉल जो जिगर से खारिज होकर पित्ते में आता है इसे तहलील करने के लिए काफ़ी केमिकल्स

0: होते हैं। लेकिन अगर जिगर से कोलेस्ट्रॉल का इखराज ज़्यादा मकदार में हो रहा हो तो कोलेस्ट्रॉल तहलील नहीं हो पाता जी, बल्कि ये क्रिस्टल्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है और फिर पथरी में तब्दील हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, नैरंग के सामाईन ये जानना चाहेंगे कि पित्त की पथरी की क्या क्या अलामतें होती हैं, आप इस पर तफसली रोशनी डालिए।
0: जी, इसकी अलामत में एक तो ये होता है कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, खासकर चिकनी ग़िज़ा लेने के बाद, जैसा कि लोग अक्सर मसालेदार ग़िज़ा लेते हैं या फिर बिरयानी खाने के बाद इसकी शिकायत करते हैं, मतली या खय होती है, मुंह का जायका कड़वा हो जाता है, भूख में कमी होती है, सीने में जलन, कभी कभार बुखार आता है, इरखान की अलामतें नमूदार होती है, जैसा कि जिल्द की रंगत और आँख की रंगत पीली हो जाना, शिद्दते दर्द की शिकायत भी पाई जाती है, कभी पथरी साइलेंट होती है यानी मरीज़ को कुछ भी शिकायत नहीं होती है, कभी लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके दोनों जानों, ये दोनों शोल्डर्स के बीच दर्द होता है, बस मरीज़ों में ये दर्द सिर्फ राइट शोल्डर में ज़्यादा होता है, और इरखान की सूरत में खारूरा और इजाबत का रंग तब्दील हो जाता है, बाज़ मरीज़ों में पेट में दर्द की शिकायत शदीद होती है, बाज़ ये शिकायत करते हैं कि उन्हें नफ़खे शिकम है या पेट फूल जा रहा है, चंद अशख़ास में ये भी शिकायत देखी जाती है कि उन्हें जाड़े के साथ बुखार आ रहा है। जाड़े के साथ बुखार आना इस बात की अलामत है कि यहाँ तो वहाँ पर वर्म है या फिर कोई इन्फेक्शन है।
1: डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज मुमकिन है?
0: जी हाँ, सबसे अहम बात यह है कि मिजाज, इसका जो उसूल इलाज है, मिजाज की इस्लाह करना सबसे अहम बात है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सफरावी मिजाज के गलबे की वजह से होता है, तो सफरावी मिजाज को मोतदिल करने के लिए सर्द और तर मिजाज वाली अद्वियात व ग़िज़ा दी जाती है। मुफर्रिहात जैसे कि कासनी, अर्ख मकू, अर्ख गौजबान, तुख्मे कासनी, संदले सफ़ेद, तमर हिंद और सौंफ वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। कलौंजी बेहद मुफीद होती है, ये छोटे छोटे पथरियों को तहलील करने में मदद करती है। और मुरक्कब अद्वियात में हम हब्बे कासनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शरबते बजूरी फ़ायदेमंद होता है, सुफूफ़े खारखस इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा माजूने अर्द खरमा, इत्रिफिले कासनी, शरबते आलू बालू, इसके बेहतरीन नतायज होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, घरेलू नुस्खों का क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो घरेलू इलाज क्या होगा?
0: जी, हर घर में नींबू तो पाया जाता है। नींबू का रस जैतून के तेल के साथ सुबह नहार लें, इससे पथरी नरम हो जाएगी। सेब का सिरका और सेब का रस दिन में 2 मर्तबा इस्तेमाल करने से भी फ़ायदा होता है। सेब का इस्तेमाल निहार पेट करें, लगातार 7 से 9 दिन करें, इससे
1: जी
0: भी फ़ायदा होगा। और मूली का रस नहायत ही कारामद होता है। मूली का रस सफरे को खारिज करता है। कलौंजी और शहद छोटी पथरी को तहलील करने में मुफीद होते हैं। यही नहीं, बल्कि अजवाइन और पुदीना हाजिमे को बेहतर करता है और बाइल फ्लो को बढ़ाता है।
1: डॉक्टर साहब, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पित्त की पथरी के बचाव की तदाबीर क्या है?
0: जी, इसमें अहम ये है कि वक्त पर
1: जी
0: ग़िज़ा ले, ताखीर ना करें, हल्की ग़िज़ा लें और मामूल के औक़ात पर खाना खाना चाहिए। मुर्गन, तली हुई ग़िज़ाएँ से परहेज़ करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, रोज़ाना वर्जिश करें या फिर टहलकदमी करें, कोलेस्ट्रॉल पर काबू रखें, कब्ज़ से बचें, ऐसी ग़िज़ाएँ लें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, मिजाज में तवाज़न रखें, सफरावी मिजाज को कम करने वाली ग़िज़ाएँ लें जैसे कि आंवला, कासनी, अनार, तमरे हिंद, इससे सफरे का गलबा नहीं होगा।

0: जो लोग मोटापा कम करने के लिए वज़न घटाना चाहते हैं या आरजूमंद है, वो आहिस्ता आहिस्ता वज़न घटाएं, तेज़ी से वज़न ना घटाएं। यानी अगर रैपिड वेट लॉस होगा तो इससे पथरी बनने का खदशा होता है। एक हफ्ते में 1.5 किलो से 1 किलो वज़न तक ही कम करने का इरादा रखें, उससे ज़्यादा ना घटाएं। पित्त की पथरी एक आम मर्ज़ है, लेकिन अगर हम मिजाज और ख़ुराक पर तवज्जो दें और तिब के उसूल के मुताबिक अमल करें तो ना सिर्फ इसका इलाज मुमकिन है बल्कि मुकम्मल तौर पर बचाव भी मुमकिन है। कुदरती अद्वियात, सादा ग़िज़ा और इतेदाल इसका बेहतरीन हल है।
1: डॉक्टर साहबा, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम जहाँ सामाइन ने सुना होगा उन्हें भी बेहद फ़ायदा हुआ होगा आपकी बातचीत सुनकर, और वो भी बहुत खुश हुए कि एक नई तरह की सलाह हमें डॉक्टर से मिली। बहुत शुक्रिया एक बार फिर।
0: भी शुक्रिया।
2: जी दोस्तों, अभी आपने सुना पित्त की पथरी के असबाब व इलाज के बारे में, जिसमें डॉक्टर तस्नीम साहबा ने बहुत तफसील से उसके असबाब और इलाज के बारे में रोशनी डाली। दोस्तों, सेहत इंसान की बहुत बड़ी दौलत है, और ये मशहूर मिसरा या लाइन तो आपने सुना होगा, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये लाइन तो बहुत से लोग बोलते हैं, मगर शायद कम लोगों को ही इस शेर का पहला मिसरा याद है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी एक लाइन को दोहराते हैं, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। गालिब का ये शेर कुछ यूं है, तंगदस्ती अगर न हो गालिब, तंगदस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो दोस्तों, अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है, सेहत है तो ज़िंदगी है। हर कदम पर सेहत को पहली तरजीह मिलनी चाहिए, और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और इस सिलसिले में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कहते हैं दोस्तों कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और अगर ये बात दुरुस्त है तो आज हमने आपके लिए पूरा दस्तरखान सजा रखा है, कुछ नगमे मोहब्बत के, कुछ यादों के, कुछ दिल को छेड़ने वाले, और कुछ ऐसे भी जिन्हें सुनकर इंसान बेख्तियार कह उठता है, अरे ये गाना तो हमारी ज़िंदगी पे लिखा गया था। तो दिल को हाज़िर कीजिए, यादों को आवाज़ दीजिए, और मुस्कुराहट का इस्तकबाल कीजिए। महफिल सज चुकी है, शुरू हो रहा है प्रोग्राम, गीत सुरीले गाते जा। तो नगमों के इस सफ़र का हम आगाज़ करते हैं, और इन नगमों के बीच हम कुछ और अहम और दिलचस्प बातों पर भी ध्यान देंगे और मौजू पर गुफ्तगू भी करेंगे। तो आइए नगमों के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और सुनते हैं ये शानदार गीत।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गातिजा में खूबसूरत और दिलकश फिल्मी नगमे। दोस्तों, अगर आपका मूड अच्छा है तो बहुत खूब, और अगर आपका मूड ख़राब है तो फिक्र न कीजिए, इसे ठीक करने की जिम्मेदारी अगले एक घंटे के लिए हमने ले रखी है। बस एक गुजारिश है कि प्रोग्राम सुनते हुए अपने पुराने महबूब को फ़ोन ना करें, क्योंकि नगमे तो हम सुना सकते हैं लेकिन उसके बाद के हालात के ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। तो ज़रा मुस्कुराइए और आवाज़ बढ़ाइए और हमारे साथ गुनगुनाइए।

जी दोस्तों, यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में खूबसूरत फिल्मी नगमे। अभी कुमार शानू की आवाज़ में आपने फिल्म अंदाज तेरा मस्ताना से ये नगमा सुना। जी दोस्तों, गाना भी अपने आप में एक फ़न है। कोई बहुत अच्छा गाता है तो कोई मीडियम गाता है और कोई अच्छा नहीं भी गाता है। तो इस पर मुझे एक लतीफ़ा जोक याद आ गया, सोचा कि आपको सुनाता चलूँ। एक साहब ने कहा कि हमारे पास दो अवार्ड हैं जो मुझे गाने के लिए मिले हैं। तो उससे पूछा गया, बताइए कि दो अवार्ड आपको मिले हैं वो भी गाने के लिए। तो कहा कि अच्छा, तो बताइए पहला अवार्ड जो है क्यों मिला आपको। कहा कि मैं इतना अच्छा गाना गाता था कि उसके लिए मुझे अवार्ड मिला। तो फिर हैरत हुई, पूछा गया कि दूसरा अवार्ड आपको क्यों मिला। कहा नहीं, मैं कैसा गाता था इसका अंदाज़ा मेरे इस सेंटेंस से करिए कि गाना बंद करने के लिए मुझे दूसरा अवार्ड दिया गया। जी दोस्तों, है ना हंसी की बात। तो ज़िंदगी में गाना एक फ़न ज़रूर है, मगर ये फ़न हर एक को आ जाए उतना आसान भी नहीं है। गाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए गायकी बहुत आसान चीज़ नहीं होती, उसे बाकायदा सीखना पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग गुनगुनाते हैं और अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे नगमों को ज़ुबान पर लाते हैं जहां से उन्हें थोड़ी राहत और थोड़ा सुकून मिल सके। तो दोस्तों, नगमों का सफ़र जारी है और नगमों के सफ़र में हम बीच बीच में बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे। तो पेश है आपके लिए इसी सिलसिले में दूसरा नगमा, समाप्त कीजिए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं दिलकश फिल्मी नगमे। प्रोग्राम का नाम है गीत सुरीले गाते जा। अभी आपने फिल्म

सीआईडी से सुना ये खूबसूरत नगमा। आवाज़ थी शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। दोस्तों, अगर हम नगमों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की मसरूफियत भरी ज़िंदगी में किसी के पास भी वक्त नहीं है। और अगर हम आज के नौजवानों की बात करें तो उनके ऊपर एक तरफ तो कैरियर प्रेशर है और अनसर्टेनिटी है, यानी कैरियर का दबाव है, और एक बेयकीनी की कैफियत भी उनकी ज़िंदगी में है। ज़िंदगी असल में एक चैलेंज का ही नाम है, और आज के नौजवानों के सामने शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, क्या मुझे अच्छी मुलाज़मत मिलेगी, क्या मैं अपने ख्वाब पूरे कर पाऊँगा, क्या जिस फील्ड का मैंने इंतखाब किया है उसमें मेरा कोई फ्यूचर भी है, और सबसे बढ़कर ये कि कहीं मैं अपने दोस्तों और अपने हम उम्र लोगों से पीछे तो नहीं रह गया। शायद इस वक्त हमारे बहुत से नौजवान सामेन के दिल में भी यही सवाल रेंग रहा होगा, और आपके दिल में भी ऐसे सवाल हैं तो आज की गुफ्तगू आपके लिए ही है। चलिए, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और फ़िलहाल सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि आज के नौजवान को सिर्फ कामयाब नहीं होना बल्कि बहुत जल्द कामयाब होना है। 22 साल की उम्र में अच्छी मुलाजमत, 25 तक अच्छी तनख्वाह, फिर अपना घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, और अगर ये सब ना हो तो कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगता है कि शायद ज़िंदगी की दौड़ में हम पीछे रह गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये दौड़ बनाई किसने, ज़िंदगी ने या हमने खुद? हर इंसान की ज़िंदगी का वक्त अलग होता है। कोई बहुत जल्द अपनी मंजिल तलाश कर लेता है और किसी को अपने असली

किसी को अपनी असल सलाहियत पहचानने में वक्त लगता है। इसलिए अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले कामयाब हो गया है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप नाकाम हो गए हैं। ज़िंदगी कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है दोस्तों, जिसमें सब एक ही लाइन में दौड़ना शुरू कर दें और चंद सेकंड में फैसला हो जाए कि कौन जीता और कौन हारा। ज़िंदगी बहुत तवील सफ़र है और सफ़र में रफ्तार से ज़्यादा अहम सम्त और डायरेक्शन होता है। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ सुनते हैं ये नगमा।

दोस्तों, यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जामे सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। अभी आपने जिंदगी प्यार का गीत है फिल्म सौतन से सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि नौजवानों के ऊपर आज के दौर में बहुत ज़्यादा दबाव क्यों है और वो इतने ज़्यादा अनसर्टेनिटी की कैफियत में क्यों रहते हैं। दोस्तों, आज के नौजवानों के कैरियर के दबाव की बहुत बड़ी वजह, मतलब नौजवान जो कैरियर के दबाव में रहते हैं उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि वो मुसलसल दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं। आप मोबाइल खोलते हैं, किसी दोस्त को नई मुलाजमत मिल गई, कोई बैरून मुल्क पहुंच गया, किसी ने नई गाड़ी ख़रीद ली, किसी ने लिख दिया कि मुझे इतने लाख का पैकेज मिल गया, और हम फौरन अपनी ज़िंदगी से उसकी ज़िंदगी का मुवाजना और कंपैरिजन करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सोशल मीडिया पर हमें अक्सर लोगों की कामयाबी नज़र आती है, उनकी जद्दोजहद नहीं, हम उनकी मंजिल की तस्वीर देखते हैं, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते के ज़ख्म नहीं देखते। कोई ये तस्वीर नहीं लगाता कि आज मैं इंटरव्यू में नाकाम हो गया, कोई अपनी 10 नाकाम कोशिशों की तस्वीरें नहीं लगाता, लेकिन 11वीं कोशिश कामयाब हो जाए तो उसकी तस्वीर ज़रूर सामने आ जाती है और हम वो तस्वीर देखकर सोचते हैं सब आगे निकल गए, सिर्फ मैं रह गया। नहीं दोस्तों, अपनी ज़िंदगी का मुवाजना किसी दूसरे की ज़िंदगी से बिल्कुल मत कीजिए। आपका असल मुकाबला अपनी ज़ात से है, अपने आप से है, ख़ुद से है। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर जानते हैं, थोड़ा अच्छा जानते हैं, तो यकीन जानिए कि आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इन तमाम लोगों को जो कि अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा सलाम है कि मंजिल की तरफ बढ़ने में आपको रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। तो चलिए, ज़िंदगी इसी का नाम है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी हम प्रोग्राम में भी आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

रहे थे कैरियर के दबाव की, तो दोस्तों इस बात को सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों एक लफ्ज़ नौजवानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है और वो लफ्ज़ है रिजेक्शन। यानी आपने मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी, जवाब नहीं आया, इंटरव्यू दिया सिलेक्शन नहीं हुआ, इम्तिहान दिया अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, आपने पूरी मेहनत की और फिर भी कामयाबी नहीं मिली। ऐसे लम्हों में इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या मुझ में ही कोई कमी है? लेकिन किसी एक जगह सेलेक्ट ना होना आपकी पूरी सलाहियत का फैसला नहीं है। कभी कंपनी को किसी दूसरी स्किल की ज़रूरत होती है, कभी एक्सपीरियंस की, कभी वक्त हमारे हक़ में नहीं होता, और कभी वाकई हमें खुद को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। रिजेक्शन को सिर्फ ज़ख्म न बनाइए, क्योंकि नाकामी के बाद सबसे अहम सवाल ये नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये है कि अब मैं क्या करूँगा। और शायद कामयाब और नाकाम इंसान के दरमियान एक फ़र्क ये भी है कि दोनों गिरते हैं, लेकिन एक दोबारा उठने का फैसला करता है। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में खूबसूरत फिल्मी नगमे। दोस्तों हम बात कर

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और फिल्मी गीतों का सफ़र हमारा जारी है, लेकिन हम फिल्मी गीतों के इस सफ़र में मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों हमने आज गीत सुरीले गा दोस्तों आज गीत सुरीले का गाते जामे नगमों के साथ हमने एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू की जो शायद लाखों नौजवानों के दिल के बहुत करीब है। कैरियर, मुस्तकबिल और बेयकीनी। अगर इस वक्त कोई नौजवान हमें सुन रहा है जो मुलाज़मत की तलाश करते करते थक चुका है, तो मैं ऐसे तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आपको शायद अपनी मंजिल अभी नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन रास्ता चलने से बनता है। कुछ नया सीखिए, अपनी एक कमज़ोरी पर काम कीजिए, लोगों से राबता कीजिए, नाकामी से सबक सीखिए और हर रोज़ एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि कैरियर सिर्फ एक अच्छी नौकरी हासिल करने का नाम नहीं। कैरियर दरअसल बरसों में बनने वाला एक सफ़र है जिसमें इंसान काम भी सीखता है, दुनिया भी समझता है और सबसे बढ़कर ख़ुद को पहचानता भी है। किसी शायर ने कहा है, नहीं मुझको मालूम मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा मैं हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो जी हाँ दोस्तों, खुद से शिकस्त न खाने का वादा कीजिए, ना हारने का वादा कीजिए, क्योंकि हार हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हारने के बाद, गिरने के बाद दोबारा उठने का हमारे अंदर हौसला होना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ नगमों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और अब पेश है पयाम शब, तहरीर पेशकश है जैदी साहब की। तो लीजिए, समाप्त कीजिए पयाम शब।

0: दिल के वीरानों में घूमोगे तो भटक।
1: पेश है पयाम शब तहरीर पेशकश है जैदी साहब की, तो लीजिए समाप्त कीजिए पयाम शब।

दोस्तों, इसी खूबसूरत पैगाम के साथ नया रंग इख्तिताम पज़ीर होता है। अगली बज़्म में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज की कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एक्सटेंड देयर लूजिंग स्ट्रीक, सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,800, मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी, and cabinet approved the Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in India.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख, सेंसेक्स में 300 अंकों से अधिक की सुस्ती आई, निफ्टी 23,800 के स्तर से नीचे पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 विशिष्ट केमिकल पार्क स्थापित करने के लिए भव्य रसायन योजना को स्वीकृति दी।
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों ने आज शुरुआती नुकसान की भरपाई की और 0.43% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 332 अंक नीचे आकर 76,060 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 102 अंक लुढ़ककर 23,767 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% नुकसान के साथ बंद हुआ। इससे पहले वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कारोबार की नकारात्मक शुरुआत देखी गई। बड़े पैमाने पर बिकवाली के कारण सत्र के पहले हिस्से में दोनों प्रमुख सूचकांक दबाव में रहे। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो निचले स्तरों पर खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण सेंसेक्स और निफ्टी ने दिन के निचले स्तर से काफी रिकवरी की।
0: Benchmark domestic equity indices paired their initial losses and ended 0.43% down today. Sensex dropped 332 points to end at 76,060, while Nifty slipped 102 points to close at 23,767. In the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index lost 0.1% and the small-cap 100 index fell by 0.3%. Earlier, the markets opened on a negative note amid heightened global uncertainty. Both the stock market indices traded under pressure during the first half of the session amid broad-based sell-off. However, as the day progressed, the Sensex Nifty recovered sharply from the day's low, supported by buying at lower levels and drop in crude oil prices.
1: सेंसेक्स में 30 में से 20 कंपनियों को आज नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट वाली कंपनियों को देखा जाए तो एटर्नल में 2.3% से ज्यादा, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.1% और बजाज फाइनेंस में 2.1%

0: 1% की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में लगभग 2.1% की बढ़त हुई। आईटीसी में 0.8% की तेजी आई और एक्सिस बैंक में 0.6% की बढ़ोतरी हुई।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 19 out of the 26 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, auto dropped 1%, telecommunications slipped 0.9%, and power fell nearly 0.7%. In contrast, focused IT advanced 1.3%, IT as well as PSU banks rose over 0.6%, and insurance gained more than 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,124 companies advanced, 2,053 companies declined, and 208 companies remain unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में लगभग स्थिर रहा और ₹96.56 के स्तर पर बंद हुआ। एकेबी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
0: और इस सप्ताह अगर कारोबार पर हम नजर डालें तो लगभग हर दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ और पिछला सप्ताह थोड़ा बेहतर था, लेकिन ये सप्ताह निवेशकों की दृष्टि से अगर देखें तो लाल निशान उन्हें ज्यादा देखना पड़ा। कौन कौन से प्रमुख ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिली?
2: एकदम आपने सही कहा निखिल जी। अगर आप 5 दिन के ट्रेडिंग देखें तो करीबन 2% की गिरावट रही और हर दिन हमने गिरावट देखी और उसका प्रधान कारण यही है कि और ये जो गिरावट जो है ये अगर आप देखें पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा साप्ताहिक गिरावट थी
0: जी।
2: और इसका प्रधान कारण ये था कि जो विश्व स्थिति जो है वैश्विक स्थिति उसमें जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और भी गंभीर हो चुकी है। जिस तरह से यूएस और ईरान का जो मसला चल रहा है वो एक समय तो ये लग रहा था कि ये शायद रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है पर वो और भी वातावरण और भी गंभीर हो जा रहा है और इसी कारण स्टॉक मार्केट एक तरफ और क्रूड ऑयल प्राइस दूसरी तरफ दोनों में जो जो एक टेंशन डर भी कह सकते हैं उसी के कारण हम जो पिछले 5 सत्र में जो हमने देखी जो गिरावट यही उसके प्रधान कारण है। कोई अंतर्देशीय कोई कारण इसमें नहीं है, ये पूरी तरह से एक एक एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ऊपर निर्भरशील ये डेवलपमेंट है। हालांकि हमने आज जो मार्केट में देखा
0: जी।
2: उसमें एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आई, वो ये लगा कि जब मार्केट नीचे आ गई तब आधे मार्केट में दिन के जो पिछले अंतिम समय में मार्केट इतनी नीचे आ गई कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स वापस आ गए और खरीदना शुरू किया। उससे जो मार्केट की जो पहले हाफ में जो जो गिरावट थी वो उतनी गिरावट से वो बंद नहीं हुई। तो इसका मतलब यही मुझे दिख रहा है कि अगर मार्केट एक पॉइंट के नीचे आ जाए
0: जी।
2: तो जो इन्वेस्टर की जो एपेटाइट जो है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि मैं ये नहीं समझता कि ये एक पॉजिटिव रीज़न है पर ये दर्शाता है कि मार्केट में एक स्टेबल लेवल जो है आज की तारीख में जो मार्केट में जो आया है वो लगता है कि एक स्टेबल लेवल है। अगर उसके नीचे जाए तो हमें ये शंका होगा कि मार्केट शायद एक और भी एक बेरिश फेज में जा सकती है, पर अगर इसी लेवल में रुका रहे तो अगले समय में अगले दिनों में अगर इसमें कोई अगर कोई इम्प्रूवमेंट होती है तो शायद आगे की ओर हम देख सकते हैं। पर इस वक्त समय एकदम बहुत ही क्रिटिकल समय है, देखना पड़ेगा कि किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स बिहेव करती हैं। यूएस मार्केट पर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहेगा, किस तरह से यूएस फेड की जो नीति जो है उसमें सब कुछ लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए इस बार
0: जी।
2: सितंबर की जो आएगी उससे पहले भी एक और एक नीति आएगी उसमें भी शायद कुछ बढ़ जाए। उससे जो जो डोमेस्टिक मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट का जो और जो मार्केट की जो जो फ्लो ऑफ मनी है वो शायद और भी कम हो जाए।
1: एकेबी फॉर द वीक ओनली एफएमसीजी एंड ऑटो एक्चुअली हैड गेन्स। एफएमसीजी रोज 0.5% एंड ऑटो बाय 0.4

0: index does play a role, but I think the bigger factor is how AI will impact its margins. One associated point that you raised about the banks and the financial sector, they have done well, but they are not doing well in the stock market. It's a very, very interesting phenomenon that we are witnessing, and that is the reason. The reason is probably that going forward, and the stock market is not a lagging indicator, is a forward-looking indicator. Going forward, the banking sector might see its margins under squeeze. So today's stock market, if you look at the banking sector stocks, they have haven't done well at all compared to the results that they came out with last week. And the reason is that their margins are likely to come under squeeze, and which is why the stock market is not giving them a thumbs up, rather they're giving them a thumbs down.
1: AKB, अगर स्मॉल को भी मिड कैप की हम बात करते हैं तो आजकल मुनाफा वसूली कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने लगी है, तो इसके पीछे क्या है ये रीज़न है कि लोग अब जोखिम लेने की बजाय सेफ ट्रेडिंग करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जिसमें लार्ज कैप में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कुछ और कारण?
0: नो, आपने एकदम सही फरमाया कि जो मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, पहले तो स्मॉल कैप इंडेक्स से जो एक्टिविटी है बहुत कम हो गई है, और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी हमने देखी पिछले 4 महीने में, और पर इस हफ्ते में हमने मिड कैप्स में भी काफ़ी प्रेशर में वो स्टॉक्स रहे, और उसका कारण आपने एकदम ठीक कहा कि लोग सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और तीसरी कारण जो मैंने अर्जुन जी को भी नहीं मैं बता सका, तीसरा कारण ये है कि बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओस की लाइनअप है और बड़े बड़े आईपीओस आने वाले हैं, और जो स्टॉक मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस वक्त क्या करते हैं कि वो जब भी वो स्टॉक मार्केट में मौका देखते हैं वो प्रॉफिट बुक करके वो अपने आप को पोजीशन में लाते हैं, जिस तरह से वो किस तरह से नए आईपीओ में इन्वेस्ट करके उन आईपीओ में से और भी पैसा निकाल सके, तो उसके कारण भी स्टॉक मार्केट ने जो नरमी देखी हमने उसका एक कारण है।
1: आगे बढ़ते हैं, अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों ने जोखिम नहीं उठाया। दक्षिण कोरिया कॉस्पी 5.7% गिरा, जापान का निक्केई 2.7% से ज्यादा टूट गया, ताइवान का ताइएक्स लगभग 2.7% नीचे आ गया, चीन का शंघाई कंपोजिट 1.6% लुढ़क गया, और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1% के नुकसान में रहा। वहीं दूसरी ओर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% लाभ में रहा। आर्थिक मोर्चे पर जापान का कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून में सालाना आधार पर 1.6% हो गया, जो मई में 1.4% था। यह बढ़ोतरी मार्च के बाद कोर महंगाई दर में पहली तेजी थी। जापान के स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार प्रमुख महंगाई दर भी जून में सालाना आधार पर 1.7% थी, जबकि मई में ये 1.5% थी। एकेबी, कल अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख था, आज अचानक से नकारात्मक रुख देखने को मिला।
0: सही कहा आपने, एक टेक अवे जो है वो है जापान की जो प्राइस इंडेक्स की जो डेवलपमेंट, वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट के लिए भी। हालांकि निकी गिर गया है मार्केट में, पर उसकी जो प्राइस इंडेक्स, वो जापान में दाम बढ़ना एक बहुत बड़ी एक घटना है, क्योंकि जापान में इन्फ्लेशन का नामो निशान नहीं है बहुत दिन से। अगर इन्फ्लेशन आता है तो हालांकि आम जनता को क्षति पहुंचती है, टेंशन होता है हम लोगों को, पर जो इन्वेस्टर जो है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर जो है, सर्विसेज सेक्टर के जो इन्वेस्टर हैं, उनको एक प्रॉफिट की एक डायरेक्शन मिलती है, प्रॉफिट अर्निंग की एक इंडिकेशन होती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इन्फ्लेशन जो 1.6% की जो इन्फ्लेशन जो बढ़कर 1.4% से आ गई है, ये भी दर्शाता है कि जापान में डिमांड की विजिबिलिटी आई है, और ये मैं समझता हूँ जापान विश्व की एक बहुत बड़ी अर्थनीति है, उसके लिए ये एक सकारात्मक डेवलपमेंट में कहूंगा, हालांकि स्टॉक मार्केट में आज इसका ठीक तरह से वेलकम नहीं किया।
2: In more news, the US has imposed a 10% tariff on imports

0: in. And now moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.1% up at 1,43,670 rupees per 10 grams, while silver was trading over 1.2% up at 2,22,490 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना मामूली बढ़त के साथ 1,42,909 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.1% ऊपर आकर 2,21,901 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एकेबी गोल्ड और सिल्वर पर आपके क्या कमेंट्स होंगे?
2: देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, थोड़ी बहुत उनमें लोगों की रुचि भी बढ़ जाती है। हालांकि वो रुचि थोड़ी कम हो गई थी पिछले कई दिनों पर, जब स्टॉक मार्केट में जो थोड़ी बहुत हलचल मस्ती है, थोड़ी बहुत बिकवाली होती है, उससे मार्केट में नीचे आता है, दबाव में आता है मार्केट, तब गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड भी ज़्यादा एक वृद्धि होती है, और इसी वही आज की गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में दिख रहा है।
1: जी, एक भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices extend their losing streak. Sensex declines over 300 points. Nifty settles below 23,800. Most Asian stock market indices end in the negative territory. And the cabinet approves a Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in India. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, प्रोग्राम आपका पसंदीदा लेकर एक बार फिर आपसे जुड़ रही हूं रोहिणी। जी हां, प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत, सदाबहार गीतों की बहार तो इसमें आप तक पहुंचाऊंगी ही, साथ ही बड़े प्यारे ख्याल भी आपसे साझा करूंगी। कहते हैं जो कभी न भर पाए ऐसा भी एक घाव होता है और उसका नाम लगाव होता है। कहते हैं ना कि दिल की अधूरी बातें भी खूब होती हैं जिनमें यादें पूरी डूबी होती हैं। गुलजार की शायरी सी लगती है ये जिंदगी जहां खामोशियां भी खूब बोलती हैं। जया 101.1 मेगाहर्ट्ज पर सदाबहार गीतों का ये अंदाज आप तक पहुंच रहा है। आज के गीत मेरे मनमीत का आगाज करते हैं इस प्यारी सी आवाज में जो कि लता जी की प्यारी आवाज से सजा गीत है। और आपको बता दूं कि प्रेम पर्वत फिल्म का ये गीत आप सुनेंगे। जानेसार अख्तर साहब ने इस गीत को अल्फाज दिए हैं और जयदेव साहब का मधुरमयी प्यारा संगीत।

मेरे मनमीत का ये अंदाज आप तक पहुंच रहा है 100.1 MHz पर। कहते हैं जिंदगी यूं ही बेकरार है, कभी खुशी तो कभी इंतजार है। ये इंतजार खत्म करते हैं और आप तक अगला गीत पहुंचाते हैं। मौसम फिल्म से ये गीत है लता जी और भूपेंद्र जी की आवाज में। इस गीत को गुलजार साहब ने गुलजार किया है और जी हां संगीत दिया है मदन मोहन जी ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा अंदाज।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

कहते हैं भूली बिसरी यादें जब आती हैं, वक्त ठहर जाता है, जिंदगी मुस्कुराती है। चलिए अगर ऐसा है तो उम्मीद यही करते हैं कि जिंदगी को मुस्कुराने दीजिए। 100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल आप सुनते रहिए। इस गीत के साथ फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत। 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत को यहीं समेटती हूँ। शुभरात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत अधिकारी सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरोफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। भारत और इसराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। अमरीका ने चीन, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 12.5% तक का नया टैरिफ लगाया है। लगभग सभी अमरीकी आयातों पर लागू यह टैरिफ कल समाप्त हुए इसी तरह के शुल्क की जगह लेंगे। अमेरिका ने कहा है कि इससे उन देशों को निशाना बनाना है जो जबरन श्रम से निपटने में विफल रहे हैं। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। रात के ख्वाब सुनाएं किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे। रात के ख्वाब सुनाएं किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे। धुंधले धुंधले चेहरे थे पर सब जाने पहचाने थे। जिद्दी वहशी अल्हड़ चंचल मीठे लोग रसीले लोग। होठ उनके गजलों के मिसरे आंखों में अफसाने थे। रात के ख्वाब सुनाएं किसको, रात के ख्वाब सुहाने थे। तो भाई जब रात गहराती है तो दिल की आवाज़ें बहुत साफ सुनाई देने लगती हैं। चांद खामोशी से मुस्कुराता है, तारे अनकही बातें कहते हैं और हवाएं यादों की खुशबू साथ ले आती हैं। एक ऐसी ही खूबसूरत रात में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ। जी हाँ, अगले कुछ लम्हों तक हम और आप रहेंगे साथ प्यार एहसास और दिल को छू लेने वाले गीतों के साथ। चलिए आगाज करते हैं रफी साहब की आवाज में जंगली फिल्म के इस गाने के साथ।

शाम गम की सहर नहीं होती, शाम गम की सहर नहीं होती, या हमी को खबर नहीं होती। चांद है कहकशां हैं तारे हैं, चांद है कहकशां हैं तारे हैं, आह यूं बेअसर नहीं होती। दोस्तों इश्क है खता, लेकिन क्या खता दरगुजर नहीं होती। रात आकर गुजर भी जाती है, रात आकर गुजर भी जाती है, एक हमारी सहर नहीं होती। तो भाई सहर भी होती है, खबर भी होती है, और इश्क भी हो जाता है। तो चलिए अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म है नया दौर, आशा भोसले और शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कभी कभी दिल जानता है कि उसे ठहर जाना चाहिए, फिर कभी किसी की एक मुस्कान, एक झलक सारी कोशिशें बेअसर कर देती हैं। हमने भी कई बार अपने जज्बातों को रोकना चाहा, खुद को समझाया कि अरे रुक जाओ, ये बस एक एहसास है। लेकिन हकीकत तो यही है कि जब दिल को और निगाहों को कोई पसंद आ जाए तो फिर ये दिल कहाँ किसी की सुनता है। चांदनी रात हो या फिर तन्हाई हो, वही चेहरा बार बार याद आता है और लगता है जैसे मोहब्बत ने खामोशी से अपनी जगह बना ली है। तो आइए चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही दिलकश नगमा। फिल्म है मेरे सनम, रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ में।

कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आँखों से, वो बात जबानी कह देंगे। जब प्यास जवां हो जाएगी, एहसास की मंजिल पाएगी। खामोश रहेंगे और तुम्हें हम अपनी कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे।

कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार देखो, दो बार देखो या बार बार देखो, ये मन भरता ही नहीं है। नज़र बार बार वहीं ठहर जाती है, जैसे चांद को देखकर हर रात नई सी लगती हो। शायद मोहब्बत की शुरुआत भी ऐसे ही होती है, जब किसी को देखने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, बस उसे देखते रहने का मन बस करता ही रहता है बार बार बार बार। तो इस हसीन रात में चलिए दिल के इन्हीं मासूम एहसास को हम और आप सुनते हैं गीत के माध्यम से।

बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हुस्न।

जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशी गंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा में हमारा आपका सफर यहीं तक, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष नाका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराध की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल STF का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि ये कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित पेशेवर और व्यापक जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों की मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा को अपने जीवन की सबसे परिवर्तनकारी शक्ति बताया। अपने गांव की पहली लड़की के रूप में कॉलेज जाने से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक के अपने सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा समावेशी समाज का सबसे मजबूत आधार है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक सुनिश्चित हो गया है। भारत की 28 वर्षीय लवलीना बोरगोहिन को बाई मिलने के बाद महिला 75 किलोग्राम मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। फाइनल में लवलीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की दो बार के विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता एम्मा सू ग्रीन ट्री से हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है गीत सुहाने। मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है वही हम बात करेंगे। तुम सोच के रखना दोगी जवाब क्या, जब हम सवालात की बरसात करेंगे। ऐ जिंदगी हम तुमसे मुलाकात करेंगे, जो बात दिल में है वही हम बात करेंगे।

कहते हैं मोहब्बत की सबसे खूबसूरत जबान आंखें होती हैं, कुछ निगाहें बिना एक भी लफ्ज़ कहे दिल की हर बात पढ़ लेती हैं। चांदनी रात में जब किसी की चंचल आंखें याद आ जाएं तो तारे भी जैसे मुस्कुराने लगते हैं। उन आंखों की मासूम शरारत और अपनापन दिल पर एक ऐसा असर छोड़ जाता है कि फिर हर नज़र में, हर निगाह में बस वही चेहरा दिखाई देने लगता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कहते हैं कि मोहब्बत नसीब वालों को ही मिलती है, जिसके साथ कोई अपना हो उसके लिए हर रात चांदनी बन जाती है और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। दुनिया की सारी दौलत भी उसे एक सच्चे इंसान के आगे छोटी लगने लगती है, जो हर खुशी और हर दुख में, हर खामोशी में आपका हाथ थामे रहता है। शायद इसीलिए तो कहा है कि दुनिया उसी की होती है जिसके दिल में प्यार हो और मोहब्बत समाई हो। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं इसी खूबसूरत एहसास के साथ।

रात की खामोशी में कभी कभी किसी की आंखें याद आ जाती हैं, ऐसी आंखें जिसमें शरारत भी हो, अपनापन भी और एक अनकहा जादू भी। उनकी एक नज़र दिल की धड़कनों को बदल देती है, जैसे चांदनी अचानक और उजली हो गई हो। शायद इसी एहसास को मोहब्बत कहते हैं। जब किसी की आंखों में पूरी दुनिया नजर आने लगे, तो इस हसीन रात, चांद, तारों और दिल के जज्बात को हम समेटते हुए चलते हैं और आपको सुनवाते हैं एक दिलकश नगमा।

कुछ रिश्ते धीरे धीरे दिल में जगह बनाते हैं और फिर एक दिन एहसास होता है कि ये दिल अब सिर्फ अपनी धड़कनों का नहीं रहा। चांदनी रात में जब किसी की याद मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाए तो लगता है जैसे जिंदगी ने अपना सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया। मोहब्बत शायद यही है, जब दिल अपनी हर धड़कन किसी एक के नाम और उसके नाम के हवाले कर देता है।

देखिए गीत सुहाने प्रोग्राम में चलते चलते हम अपने अंजाम की तरफ आ चुके हैं और चलते चलते सुनवाएंगे आपको एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत। फिल्म है फागुन और रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम जिंदगी की बात करें, मोहब्बत की बात करें, तो मोहब्बत ज़िंदगी में कभी दस्तक देकर नहीं आती। बस एक मुलाकात होती है, एक मुस्कान एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती है और दिल चुपके से किसी और का हो जाता है। फिर चाहे वो शख्स अपना शहर छोड़ दे या फिर दूर चला जाए, उसकी यादें चांदनी की तरह हर रात साथ रहती हैं। कुछ लोग जिंदगी में बस कुछ पल के लिए आते हैं, लेकिन उन पलों की खुशबू उम्र भर दिल में महकती रहती है। तो चलिए इस महकती रात, चांद और तारों की गवाही में सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

मेरे लिए तू खुद को यूं खुद से जुदा न कर, अच्छा तो यही है कि तू मुझसे मिला न कर। जितना भी हो सके तू कर लोगों की भलाई, अपनी तरफ से तू किसी का भी बुरा न कर। और इन्हीं पंक्तियों के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू

0: कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्यवाही में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। यह कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि यह कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत और तंजानिया ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है। इनमें व्यापार एवं निवेश, विकास साझेदारी, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और संस्कृति जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श बैठक इस माह की 22 तारीख को दार असलाम में आयोजित की गई। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक सुनिश्चित हो गया है। भारत की 28 वर्षीय लवलीना बोरगोहेन को बाई मिलने के बाद महिला 75 किलोग्राम मुक्केबाजी के सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। फाइनल में लवलीना का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की दो बार के विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता एम्मा सू ग्रीनट्री से हो सकता है। हॉकी में भारतीय जूनियर श्रेणी के खिलाड़ियों ने मस्कत ओमान में आयोजित FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से हराया। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की लड़कियों ने एलीट पूल में अपने मैच में चीन के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया लेकिन 3-6 से हार गईं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message on Thursday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. The NTA has also issued advertisements for

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, अगर जिंदगी में हम किसी के लिए चांद नहीं बन सकते तो किसी की सुरमई रात की चांदनी बन जाइए, क्योंकि रोशनी वही नहीं है जो सबसे ज्यादा चमके, बल्कि वो है जो किसी के अंधेरे को कम कर दे।

0: कुछ मौसम सिर्फ बदलते नहीं, दिलों में उतर जाते हैं। ठंडी हवा का झोंका, चांदनी की नरम रोशनी और किसी खास की अपने की याद, बस इतना ही काफी है दिल को मुस्कुराहट से भर देने के लिए। शायद यही मौसम का जादू है जो हर धड़कन में मोहब्बत के रंग भर देता है।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कहते हैं कि मोहब्बत हो जाए तो पूरी कायनात अपने पन से भर जाती है, और फिर ये धरती जमीन आसमान पहले से ज्यादा हसीन लगने लगते हैं। चांद थोड़ा और करीब और सितारे जैसे हर दुआ के गवाह बन जाते हैं। इंतजार भी तब शिकायत नहीं रहती, बल्कि उस मुलाकात की उम्मीद बन जाती है, जहां दो दिल बिना कुछ कहे एक दूसरे का हाथ थाम ले। तो अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई साथी है या ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप पूरी दुनिया और उसके साथ पाकर आप दुनिया से बढ़कर मानते हैं, तो ये खूबसूरत नगमा जो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये उसी प्यार के नाम।

राज सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। रात जितनी खामोश होती है दिल की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देती है। कुछ मोहब्बतें साथ नहीं छोड़ती चाहे फासले कितने भी बढ़ जाएं। चांद हर रात आसमान में लौट आता है लेकिन कुछ लोग सिर्फ यादों में ही मिलते हैं। तब दिल खामोशी से अपनी बात कहता है और तन्हाई का हाल सुनाता है कुछ इस तरह।

मंजिलें दर मंजिलें, फासले दर फासले, रास्ते दर रास्ते, हादसे दर हादसे, चलते चलते रुक गया हूँ मैं भी इस उम्मीद पे, लोग जो बिछड़े हुए हैं मुझसे शायद आ मिले। तो इसी के साथ रात सुरमई का ये सफ़र यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाज़त, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेज़ी में समाचार।

0: अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। भारत और इजराइल ने प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लिए वार्ता का दूसरा दौर सफलतापूर्वक संपन्न किया। 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में चली वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और एक संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में प्रगति जारी रखी। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस महीने की 18 तारीख को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत MV ओमोराफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। पोत पर सवार अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। हॉकी में भारतीय जूनियर श्रेणी के लड़कों ने मस्कत ओमान में आयोजित FIH युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से हराया। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की लड़कियों ने एलीट पूल के अपने मैच में चीन के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया लेकिन 3-6 से हार गईं। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस प्यारे से गीत के साथ।

सच्चा प्यार किसी ऐलान का मोहताज नहीं होता, वह तो दिल की हर धड़कन में चुपचाप अपना घर बना लेता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त

आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है हम राही. किसी अपने का हाल पूछना केवल एक सवाल नहीं बल्कि दिल से निभाई जाने वाली सबसे प्यारी परवाह है.

कभी एक नज़र ही दिल की धड़कनों का नया सुर दे देती है। यही तो मोहब्बत का सबसे खूबसूरत अंदाज है।

और इस समय कह रहे हैं कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, छोड़कर जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज में से सजाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। तो मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, नमस्कार। और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी कागजी कार्रवाई में गड़बड़ी और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। यह कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि यह कार्यबल विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित लोक परीक्षाओं से संबंधित अपराधों की त्वरित, पेशेवर और व्यापक जांच करने

0: के लिए जिम्मेदार होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जलक्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। एक आधिकारिक बयान में दूतावास ने एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह स्थानीय अधिकारियों के साथ सक्रिय संपर्क में हैं। भारत के झंडू कुमार ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक है। झंडू कुमार ने 181 और 190 किलोग्राम भार वर्ग में सफलतापूर्वक उठाकर 130.9 अंक हासिल किए, पोडियम पर जगह बनाई। नाइजीरिया के रिलवान इद्रीस ने स्वर्ण पदक जीता जबकि इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने रजत पदक हासिल किया। मौजूदा चैंपियन भारत के सुधीर 114.1 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. The NTA also issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager and engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. NTA in a statement said that these measures is being implemented in line with the recommendations of the high-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation today. Both the Houses of Parliament were adjourned till Monday following ruckus for the fifth consecutive day over the issues of NEET paper leak and student protest. Despite repeated assurance from the government side that it is ready to discuss issues related to NEET paper leak case, the opposition continued its protest, demanding the resignation of Union Education Minister. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the third and fourth rail line of Ballari-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। ये वादा रहा फिल्म के गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार RD बर्मन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म भाई भाई से गीतादित्त की आवाज में, गीतकार राजेंद्र कृष्णन और संगीतकार मदन मोहन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म लम्हे से लता मंगेशकर और इलारून की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार शिवहरी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. प्रोग्राम है अरुणिमा और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, सुनते हैं अगला गीत फिल्म मौसम से भूपेंद्र और लता मंगेशकर की आवाज़ में. संगीतकार मदन मोहन, गीतकार गुलजार.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

अभी आपने गीत सुना याराना से किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार अनजान, संगीतकार राजेश रोशन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म सितमगढ़ से आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म हम दोनों से आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरटी बर्मन।

और मैं छोड़ के जा रही हूँ आपको प्रोग्राम अरुणिमा के आखिरी गीत के साथ। 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। गीत है फिल्म जख्मी दिल से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। तो मैं लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है। एजेंसी ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर अपनी सहमति दे दी है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंगटकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपये की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ गया है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक

0: सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। यातायात पुलिस ने बताया कि आपातकालीन सेवाएं निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 18 जुलाई को काला सागर में रूसी जल क्षेत्र में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। घटना के समय पोत पर 3 भारतीय नागरिक सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। एफआईएच युवा हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर श्रेणी के बालकों ने पाकिस्तान को 7-3 से और मेजबान ओमान को 10-1 से मात दी। वहीं भारतीय जूनियर श्रेणी की बालिकाओं को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इस प्रतियोगिता में देश का ये पहला पदक है। झंडू कुमार ने 181 और 190 किलोग्राम का भार उठाकर सफलतापूर्वक ये पोडियम पे स्थान बनाया। नाइजीरिया के रिलुवान इद्रीस ने स्वर्ण पदक जीता जबकि इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले मैच में जीत दर्ज करके श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Union Cabinet approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. The NTA also issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager and engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. NTA in a statement said that these measures are being implemented in line with the recommendations of the high-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth 3 main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation today. Both the Houses of Parliament were adjourned till Monday following ruckus for the 5th consecutive day over the issues of NEET paper leak and student protest. Despite repeated assurance from the government side that it is ready to discuss issues related to NEET paper leak case, the opposition continued its protest demanding the resignation of Union Education Minister. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the 3rd and 4th rail line of Ballari-Guntakal section in Karnataka and Andhra Pradesh with a total cost of 1,264 crore rupees. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said it will improve connectivity between Andhra Pradesh and Karnataka.
2: Approval hua hai Guntakal se Bellary 3rd and 4th line.
3: Approval has been granted for the construction of the 3rd and 4th railway lines between Guntakal and Bellary. Further ahead, the detailed project report for the 3rd and 4th railway lines between Hospet and Hubli is already under preparation. This will create a complete economic corridor in North Karnataka, connecting both Karnataka and Andhra Pradesh. The project is scheduled to be completed within 3 years.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। समय हो गया है 5:11 और 7 सेकेंड। समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की सुर संगम के इस भजन के साथ।

जिस तरह मधुबन बिना किसी भेदभाव के अपनी खुशबू बांटता है, उसी तरह हमारा जीवन भी प्रेम, दया और सद्भाव की सुगंध से महकना चाहिए।

हर कठिन समय के बाद खुशियां की नई सुबह आती है, इसलिए विश्वास बनाए रखें, मेहनत करते रहें और मुस्कुराते हुए अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।